0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Kashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to the Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till 29th of this month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all the existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Claims and objections can be filed from 5th of August to 4th of September. The final electoral roll will be published on 7th of October. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion US dollars to around $530 billion US dollars. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Roland Lescure co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence city yesterday. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for the economic development and welcomed the prospects for future projects. In the FIFA World Cup, Argentina were leading 3-2 against Cabo Verde in extra time in their round of 32 match in Miami Gardens in the US as the thrilling encounter underway. Earlier, Egypt advanced to the round of 16 after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. Australia and Egypt were tied 1-1 after 90 minutes of regulation time and 30 minutes of goalless extra time. And that is the end of this news bulletin.
3: এ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1026 কিলোহাৰ্জত। অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए

0: मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a date.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সন্ধিয়াৰ পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता बीआईए आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की।

आज के इस प्रसारण में मैं हाजिर हूँ कर्मा श्रीवास्तव आपके लिए लेकर गीत और संगीत का खजाना। लेकिन गीतों के उस सुहाने सफर पर चलने से पहले आइए जानते हैं आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर आप सुन पाएंगे स्वर संगम और 1:05 पर रिले किया जाएगा अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गुंजन और 1:40 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा नजराना और इसके साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

0: ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और आइए आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट्स से। आवाजें हैं आकृति कक्कर और शाहिद मल्ल्या की।
1: आ, आ, आ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज में गैंगस्टर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत है प्रीतम का।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागजोतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको सुनाते हैं स्वर संगम। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले नजर डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर।

सनक भाई, कल रविवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम आज के गीत और 12:38 का समय होगा कार्यक्रम सबरंग का।

1:05 पर रिले किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गीतिका। 1:40 से पेश किया जाएगा शीर्षक संगीत और दिन के 2 बजे से बारी बारी

कल के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीत अपना धुन पर आई, जिसे आप सुन पाएंगे दिन के 2:30 बजे से, और इसके साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी, और अब हम स्वर संगम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं ब्रजमोहन प्रसाद।

और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल देके देखो।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रज्ञा दिसपुर है मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। शनिवार अब से हमारा यह कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

और हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम गुंजन। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रहार फिल्म का गीत, आवाज सुरेश वाडकर की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे चंद बंगला गीत। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हेमंत मुखर्जी की आवाज में ये गीत, एल्बम है ठिकाना।

0: इस गीत के साथ ही प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अभी दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 से रिले किया जाएगा दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे।

0: और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष

0: चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है तो उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और हम हाजिर हैं लेकर आज के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम नजराना।

सनी भाई, पेश है ये पहला नजराना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यार का सागर।

इसके साथ ही नजराना कार्यक्रम यही समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ब्रजमोहन प्रसाद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा। इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। स्वागत करती हूँ अपने दोनों विशेषज्ञों का, डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
1: अस्थमा ज्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो है वो सुखड़ जाते हैं
0: जी।
1: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
0: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताएं सर।
1: जी, रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
1: जानकारी जिन्होंने, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछे जो पसलियां हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है, आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं, बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है। देखिए, जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर?
2: नहीं, देखो अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं,
2: तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी एहतियात बरतें, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है, और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें। हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को जरा से इस मौसम में खांसी जुकाम होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
2: देखिए, अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है, और ये मेनली इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन ये जहां तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है ये अस्थमा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
0: जी, और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं?
3: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस बाहर निकालने में तकलीफ ज्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज बनती है। कई बार तो ये सीटी की आवाज इतनी

0: तेज होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज यही कहता है कि सीटी की आवाज है, और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और खराब हो जाती है।
1: तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज्यादा अटैक करता है, ऐसा कहा जा सकता है? बताएं अजीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ होती है ज्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में। तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कई बार अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो ठंड में जाओ तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
1: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए।
0: एकदम से अपने पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
1: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर?
2: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या?
0: मौसम बदलाव के दो चीजें हैं, एक तो मार्च अप्रैल में है मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है, पेड़ के जो पोलन है जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सर्द गर्म और जब मौसम बदलता है तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको जरूर बताएंगे डॉक्टर रेहान सर। अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर को भी नमस्कार, मैं यामिन भाई रेडियो वाले।
1: जी जी जी बताएं।
3: मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिनके मम्मी पापा को अस्थमा या ये सांस की बीमारी होती है, क्या उनके बच्चों में भी ये बीमारी होने का संभावना रहती है, ये बताएं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं बच्चे?
2: देखिए, जो अस्थमा होता है उसके दो कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, जेनेटिकल भी रहता है। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर एक पेरेंट को अस्थमा है तो लगभग चांसेस 20-30% रहते हैं कि वो बच्चों में जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो उस केस में चांसेस 40-60% भी हो सकते हैं। तो आपको यही है जो ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसा कि हम बता रहे हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीजों से दूर रहें और प्रॉपर इनहेलर का जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखें।
1: सर, ये भी अब सवाल उठता है कि अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं कॉल लेने से पहले आपसे पूछ रही थी।
2: देखिए, सबसे प्रथम तो जो पेशेंट रहता है अस्थमा का, उनके जो ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे पहले तो पेशेंट अस्थमा अटैक आते ही सीधे बैठ जाना है। उसके बाद में जो इनहेलर होता है, इनहेलर के 2-3 जो पंप होते हैं वो इनहेलर के वो लेने होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और अगर हर 20 मिनट में ये रिपीट करना है, अगर सही नहीं होता है फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे।
1: तो ध्यान रखें कि बहुत नॉर्मल उसको ना लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक है अस्थमा का तो तुरंत अवेयर हो जाएं और हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और तमाम जानकारी जो लें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो।
1: जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, नमस्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। कहाँ से बोल रहे हैं सर?
4: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी, शुभ नाम बता दें अपना।
4: वीपी सिंह नाम है मेरा।
1: जी वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
4: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मुझे मैंने अपने टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी। खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया, अब खांसी है नहीं, लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं पेन होता है चेस्ट के अंदर, हल्का सा, खांसी जोर से नहीं आती है जैसे नॉर्मल तरीके से, कई बार खांसी आ जाती है उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में। तो ये क्या, कौन सा लक्षण हो सकता है? ये मेरा जानना।
2: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने

0: के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज आती है, जबकि जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे, तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस चीज को।
1: मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है
2: जी। आपकी उम्र क्या है सर? उम्र क्या है आपकी लगभग?
1: मेरी एज है 65 प्लस।
2: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में? देखिए, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो
0: जी? आपको मेन चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
1: पेन नहीं रहता चेस्ट
0: जी,
1: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल।
0: जी जी।
1: तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी।
0: जी जी।
1: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई।
0: जी जी।
1: और ट्रीटमेंट भी चला मेरा।
0: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए?
1: दिक्कत ये है जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
0: जी जी
1: तो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर।
0: देखिए, वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में, जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज, एक सेंडोक्सा ऐड करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला, अगर तेजी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह है उन पे स्ट्रेन पड़ता है, हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
2: जी, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें?
3: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है कि छींके आती है, नाक से पानी आते है, नाक से सांस बंद हो जाता है। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफी संबंध है। लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम है उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे। साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इनहेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं, वो साथ के साथ चलेंगे, दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे। और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग दो किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, थोड़े महंगे टेस्ट जरूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीजें कंट्रोल में रह सकती है।
2: जी, और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी।
3: कई बार दोनों इकट्ठे साथ के, दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज्यादा है।
2: जी, क्या फेफड़ों की स्थायी बीमारी होती है अस्थमा, या इसे ठीक किया जा सकता है?
0: देखिए, जो अस्थमा जो होता है वो स्थायी तो हम नहीं कह सकते
2: जी।
0: जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बच्चों में हो रही है तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में हो रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग आराम से,
2: मतलब जिनको अनुवांशिक है ये बीमारी, वो भी ठीक होने की गुंजाइश बनती है।
0: जी, ठीक तो नहीं कह सकते, बस हाँ। कंट्रोल रह सकती है बीमारी, आराम से अच्छा जीवन जी सकता है मरीज, जो अस्थमा का मरीज होता है वो।
2: और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि बच्चे हैं, जैसे बड़े हैं वो अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, तो क्या उनको हर वक्त इनहेलर साथ में रखना चाहिए?
0: देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में जरूर रखें, साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई जरूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज करना है, वो ताकि उनको बता सकें, तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज को।
2: जी, तो बहुत सावधानी बरती है, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
4: मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
2: जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका?
4: एक हमारे गांव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है,

0: तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
1: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो एटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कॉज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
2: तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा। इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जेटिक और पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी वीजिंग होती है सोते हुए। डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही है, लिखती है।
1: देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर, जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
2: जी।
1: तो इन सब चीजों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज में।
2: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही है होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
1: जी जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस तो जब भी अटैक होता है उस टाइम साथ में लें, और स्टेरॉइड्स का जो इनहेलर जो होता है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करें ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: निर्भय सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है।
4: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
3: गले गले में रहता है बलगम।
4: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको बार बार साफ करना पड़ता है।
3: घबराने की तो कोई बात
4: नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो कराना पड़ेगा।
3: नहीं वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वही कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से पूछ पता करता हूँ।
4: नहीं, ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
2: जी, और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर, सीजीएचएस, न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ
1: जी।
2: पहले अब स्ट्रेट मैन सीधा होकर बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ में लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज करिए माउथ में रख के, फिर दो से तीन बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में दो से तीन पंप लेने हैं, उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर स्टीरॉयड यूज करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, मेरे को अस्थमा है काफी।

0: साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
0: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती, एक दवाई वाला लेती हूँ। तो ये कहते हैं कि पंप ज्यादा नहीं लिए, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
0: हम कमलेश्वर में ब्लाइंड हूँ।
1: जी जी, कोई बात नहीं। हाँ बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से जी। डॉक्टर साहब, हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं, और कुछ कहना चाह रही थी आप?
0: और मैम, मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है? आंखों दिन नींद भरी रहती है और आपको आती नहीं है, धूप में खुल जाती
1: है। ये भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब?
2: आपका जो सर दर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आंख के आसपास भारीपन रहता है तो हाँ, ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहां तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है, ज्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
0: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के, एक दवाई वाला, एक छोटी सी गोली खाती हूँ। तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
3: जी जी जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
0: अच्छा,
3: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इनको आपने बता दिया है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रही है, आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा? डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर।
3: देखिए, जो इनका पहला सवाल है, हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रोल, एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज करते हैं, जैसे साल्बुटामोल हो गया, वो रिलीवर मेडिसिन होता है। एक होता है कंट्रोलर, वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या लंबे टाइम तक डिजीज को प्रिवेंट करता है। तो उसमें बेसिकली एंटी इंफ्लामेटरी स्टेरॉइड्स, जो कि इंफ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बताएं क्या सवाल है?
4: ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है, और ब्रोंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन भी बनाया कि नहीं?
3: देखिए, जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई
2: है, नहीं है,
3: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आ जाए।
1: तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, खास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है, खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है क्या, कि ठंडी चीजों से बचना है, गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीजों से बचना है?
3: जी जी बिल्कुल, इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीजों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठंडा पानी हो गया वो तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए तो डिजीज कंट्रोल में रहती है, और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
1: लेकिन अब एक समस्या आती है कि क्या अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो कंटिन्यू चलती रहेगी, या क्या कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीजें?
3: देखिए, अगर लंबे टाइम तक, जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी, तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें।
1: तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और हमारे पास आया हुआ है मैसेज। ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई है?
1: जैसा कि इन्होंने मतलब बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
0: जी,
1: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली सांस की बीमारी है या कुछ और कारण
0: जी। घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है? मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं।
1: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी
0: जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि खानपान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
2: जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पोर्ट्स, तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम जरूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पावर बढ़ेगी। कहते हैं आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है, बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफी फायदा आएगा।
0: हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति।
3: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा जी, एक सवाल का उत्तर छूट गया था
0: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था
3: आपका? जी, मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है?
1: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होती है और उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल होती है, जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक क्रोनिक बीमारी है और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है दोनों में, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है।
0: तो चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया है, और संयोग है कि आपका फोन मिल गया दोबारा से। अक्सर ऐसा होता है कि फोन लाइन मौजूद नहीं रहती है, और मतलब मौजूद तो है लेकिन मिलता नहीं है फोन जल्दी से, तो ये समस्या आपकी दूर हो गई है। और अगला जो हमारे पास मैसेज है, लिख रहे हैं दोनों डॉक्टर साहब और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। मैम, अस्थमा में पॉल्यूशन का क्या रोल है? अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखने से क्या कोई फर्क पड़ता है, कृपा करके बताएं। नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं।
1: देखिए, जो साफ सफाई अगर रखेंगे हम तो डस्ट होगा, जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा, तो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे अस्थमा बेहतर रहेगा, जिससे कि अस्थमा कंट्रोलेबल रहेगा
0: जी।
1: तो साफ सफाई का तो हमें हमेशा ही विशेष ध्यान रखना चाहिए,
0: ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैसेज है हमारे पास। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि टीबी और अस्थमा में क्या अंतर है, और मेरा लड़का 11 साल का है, 3 साल से नाक से ब्लड आता है, ईएसआई में उसका सारा इलाज हुआ है, मगर नाक जब बंद होने लगती है तो कोड की वजह से ब्लड आने लगता है, किस तरह से उसका क्या इलाज किया जाए?
2: आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो कि टीबी और अस्थमा में क्या फर्क है। टीबी एक छाती की इन्फेक्शन है, अस्थमा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अस्थमा फेफड़ों की हाइपर रिएक्टिव प्रदूषण वगैरह की वजह से होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों का अलग अलग, सिवाय के दोनों में खांसी होती है और कोई सिमिलैरिटी नहीं है।
1: देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अस्थमा होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, जबकि टीबी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ये चीज।
2: अब जहां तक नक्सीर का सवाल है, वो अस्थमा से कोई ताल्लुक है नहीं, पर उसका अगर कहीं भी खांसी जुकाम हो, नजला हो, तो नाक के अंदर थोड़ा ये ब्लड बढ़ जाता है, और छोटे बच्चों में छोटी नक्सीर अक्सर होती है, तो यही है कि खासकर गर्मियों में उसका थोड़ा लुब्रिकेशन रखना चाहिए, तो क्रीम या कुछ लगाएं कि आगे सूखापन नहीं रहे और नाक में उंगली वगैरह नहीं डालें।
0: अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 वर्ष की है, और लिख रही हैं कि मैं हृदय रोग की मरीज हूं, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे नेबुलाइजेशन और इनहेलर दोनों दिया गया है, क्या ये एक है या

0: अलग अलग है।
1: देखिए मेजर डिफरेंस जो नेबुलाइजर और इनहेलर में जो होता है, इनहेलर जो होता है बेसिकली पंप होता है जिसको पंप की मदद से हम लेते हैं, जो नेबुलाइजर होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसके बाद में उसको भाप दी जाती है।
0: तो इसका अलग अलग प्रयोग है और दोनों ही जरूरी होता है।
1: दोनों ही जरूरी
0: स्थिति है, उम्र भी ज्यादा है, 75 वर्ष की उम्र है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं
1: जी
0: है
1: जी।
0: तो आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर साहब ने आपका मार्गदर्शन कर दिया है।
2: जो आप कह रहे हैं कि हृदय के मरीज हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था दो किस्म की दवाइयां, एक जो कंट्रोल करती है प्रिवेंट, जो दवाई कंट्रोल करती है जैसे ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लेने से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे हृदय में असर पड़ सकता है। वही एक चीज के लिए आपको संपर्क रहना चाहिए
0: जी। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई। उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट डाउन करिए ताकि आप भूल ना जाएं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, अस्थमा विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार आप सभी का जो सवाल है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आ चुका है रमेश कुमार जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत धन्यवाद। कैन अस्थमा पेशेंट कैन लीड नॉर्मल लाइफ?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अस्थमा पेशेंट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस लें, सही तरीके से लें, सही टाइम पे लें। जैसा कि हम देखते हैं ओपीडी में, मैंने देखे हैं 85 इयर्स 90 इयर्स के पेशेंट भी आते हैं, अस्थमेटिक हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से दवाई लेते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं वो लोग।
0: जी डॉक्टर साहब,
2: मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सीजनल अस्थमा होता है, जो ज्यादातर पोलन से रिलेटेड होता है, जैसे दिल्ली में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और दिल्ली में उसके बाद अब प्रदूषण से दशहरा के बाद जनवरी तक चला है पिछले साल, वो उस किस्म के अस्थमा में जब नॉर्मल हालात हो जाते हैं, जैसे अब मई में एक दो हफ्ते में बिल्कुल पोलन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी लीड कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी। सिर्फ जब ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं तब दवाइयां लेनी पड़ती है, बाकी टाइम वो जैसे बोला था हार्ट स्पॉट्स भी कर सकता है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, नेजल पॉलिप, साइनसाइटिस और एलर्जी का अस्थमा से क्या रिलेशन है?
2: नेजल एलर्जी राइनाइटिस जो कि नाक की एलर्जी होती है, उसकी वजह से नेजल पॉलिप्स होते हैं ज्यादातर, आसपास जो फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे नाक में पॉलिप होते हैं। नाक के पॉलिप मतलब नाक के अंदर अंगूर जैसे छल्ले बन जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद रहती है, स्नीजिंग होती है, साइनसाइटिस जहां नाक के आसपास साइनसेस में बलगम इकट्ठी हो जाती है। इनके दमा अस्थमा से दो ताल्लुक है, एक तो पॉलिप्स और अस्थमा, ये दोनों ही चीजें बाहर के ट्रिगर फैक्टर से प्रवोक होती है। लगभग 60% चांस है कि मरीज अगर जिसको पॉलिप है उसको अस्थमा भी होगा, प्लस अस्थमा वाले मरीज को पॉलिप्स भी हो सकते हैं। दूसरा, साइनस से अगर रेशा गले में गिर के छाती में गिर रहा है तो वो भी फेफड़ों को इरिटेट करके दमे को प्रवोक कर सकता है।
0: जी
2: एलर्जी दोनों में ही रहती है, ट्रिगर फैक्टर एलर्जी दोनों में ही कॉमन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, लंबी खांसी चल रही है और सूखी खांसी है तो अक्सर लोग फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ये अस्थमा का लक्षण तो नहीं है?
2: ये पेशेंट मरीज से पूछना पड़ेगा, लंबी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ सीटी बजती है नहीं बजती है, खासकर बलगम है या सूखी है, लेटते हुए सारी खांसी ज्यादातर लेटने से खराब होती है, चाहे साइनस का रेशे बलगम से हो, अस्थमा से हो। तीसरा फैक्टर खांसी का है पेट का तेजाब ऊपर आके जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी। क्यों?
1: जी ये एपिसोडिक रहता है, तीनों सिम्टम जो रहते हैं एपिसोडिक।
2: अगर अकेले लंबी चल रही बिना इन तीनों के सिम्टम के तब ये अस्थमा नहीं
0: हो सकता। जी अब डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका डिफरेंस कैसे किया जाए?
1: जी ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। मेनली जो कार्डियक की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि जो अस्थमा होता है उसमें फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो बेसिकली अस्थमा के केस में ये सीटी की आवाज रहता है, जबकि कार्डियक केस में सीटी की आवाज नहीं बल्कि शरीर में सूजन रहती है, पांव में सूजन रहती है, वो अलग फैक्टर्स होता है, इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं उस चीजों से।
2: और उसमें खड़खड़ की इसी भी आवाज है?
1: जी
2: सीटी की जगह।
1: जी ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए, और बाकी जो स्पेशलिस्ट के पास जाके जो टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिफरेंस कर देगा उस चीज को।
0: जी तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं उनको किस तरह की और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने मौसम का भी आपसे जिक्र किया कि मौसम बदल रहा है, और हमारे जो श्रोता थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक बार

0: आप कुत्ते से एलर्जी है, बिल्ली से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है,
1: या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम,
0: स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कई किस्म की बरमुडा ग्रास और आसपास घास होती है, उनसे अवॉइड करना सबसे जरूरी है। आपने मास्क के बारे में बोला था, यही है कि थोड़ा सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है, पर अगर प्रदूषण में जाए तो वो N95 अगर मास्क पहने तो बचाव हो सकता है, पर फिर दूसरी प्रॉब्लम यह होती है क्योंकि वैसे ही उनको सफोकेशन है तो मास्क पहना नहीं जाता।
1: मास्क तभी पहने जब वो एक्सपोजिंग एनवायरनमेंट में जा रहे हो।
2: जी तो बहुत ही यहाँ पे उम्दा चर्चा रही है कि उम्मीद है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाभ जानने को मिले हैं, और जो भी पेशेंट है उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा। अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुंची है तो उसका लाभ आपने जरूर लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम। बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
0: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंदी की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शाम को गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। भीषण गर्मी के कारण 22 से

28 जून के दौरान 2000 से अधिक मौतें हुई। प्रधानमंत्री ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर कोइको फुजिमोरू को बधाई दी है। और अंत में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंचा। और अंत में मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या है, आपके सीखने की शैली। बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी। उनकी सूची अस्थाई थी। पहले 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती है एवं अंतिम 2 वे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: बहुप्रतिभा के प्रकार, दृश्य संबंधी स्थानिक प्रतिभा, दृश्य को समझने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोग चित्र के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो तथा फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में शामिल है पहेलियां बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप कलाकार, स्कल्प्टर या पेंटर बनना, प्रतिबिंबों में हेर फेर, निर्माण दृढ़ करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों व्याख्या करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां नाविक, शिल्पकार, दृष्टि कलाकार यानी चित्रकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर्स, शाब्दिक। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट दोस्तों, वी हैव शाब्दिक यानी बहुभाषा प्रतिभा, शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोगों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। ये चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। उनके कौशल में शामिल है सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां हैं दोस्तों कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिक, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले तार्किक एवं संख्यागत तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाना है। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं प्रयोग करना पसंद करते हैं। उनके कौशल में शामिल है समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों एवं श्रेणी में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांत के स्थित कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव दैहिक यानी इंद्रियगत प्रतिभा, शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षता पूर्वक पकड़ने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले अपने आप को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन्हें संतुलन एवं हाथ से आंख के समन्वय का अच्छा बोध होता है। उदाहरण के लिए गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स, अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद एवं प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं। उनके कौशल में शामिल है नृत्य, शारीरिक समन्वय, खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना। करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों, एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता, कारीगर। मूविंग अहेड वी हैव संगीतज्ञ तालग्रही प्रतिभा, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता। संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। वे संगीत में जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए झिंगूर, घंटिया, नल से टपकता पानी। इनके कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। करियर के लिए संभव मार्ग है वादक, डिस्क जॉकी, गायक, संगीतकार। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा, अन्य को समझना एवं संबंध स्थापित करने की प्रतिभा। ये विद्यार्थी बातों को अन्य लोगों के नजरिए से देखते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरणा को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। वे बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, हालांकि कभी कभी वे गड़बड़ का सहारा भी लेते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांत बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्य से संवाद आरंभ करने के लिए वाक जैसे कि बोलना एवं अवाक जैसे कि नजर मिलाना, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनके कौशल में शामिल है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, दोहरे परिप्रेक्ष्य, समानुभूति का उपयोग करते हुए अन्य लोगों के मूड और भावनाओं को समझना, समूह के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहित एवं इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से और गैर संचार मौखिक रूप से संवाद करना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना। करियर के लिए संभव मार्ग है परामर्शदाता यानी काउंसलर, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी। तो दोस्तों, ये थी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी बिल्कुल, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल प्रोग्राम अल्फाजन के साथ, मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ।

साहब, ये मन जो है ना छोटा सा प्यारा सा वो भागता रहता है, लेकिन कंट्रोल भी तो हमें ही करना पड़ता है। कई बार इच्छा होती है ना कि फोन, लैपटॉप, आईपैड इन सबसे कहीं दूर चले जाएं। शायद हम लोग पूरे सप्ताह इन स्क्रीन टाइम से थके होते हैं और ज़रूरत होती है सुकून की, और इसके लिए FM रेनबो है ना आपके साथ। दिल से दिल तक आप जुड़े होते हैं FM रेनबो पर।

वाकई दोस्तों मौसम जो है बहुत ही प्यारा है और पीने का मौसम है, और इस प्यारे से मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात हो। अपने परिवार के साथ मिल बैठकर चाय पीने का जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। और माना कि मौसम अच्छा है और आप सैटरडे पार्टी करने के मूड में हैं, लेकिन सावधानी से बहुत ही धैर्य से ड्राइव करें, सुरक्षित घर पहुंचे। यही तो हम सबकी ख्वाहिश होती है ना कि हम सभी सुरक्षित रहें, अपने आसपास के जितने लोग हैं वो सभी सुरक्षित रहें और सभी खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम लला।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगल हारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हम बिल्कुल आ गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन। वैसे तो दोस्तों हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरों को भी हम खुश रखना चाहते हैं? ऐसी कोशिश हमारी होती है? शायद नहीं। दूसरों को खुश रखने के मामले में हम लोग थोड़े से स्वार्थी होते हैं, थोड़े से मतलबी होते जा रहे हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हम अपने आसपास देखते हैं कि सिर्फ लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें, उनके बच्चे को ही सब कुछ मिले, और इन्हीं बातों को लेकर लोग चिढ़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। अगर दोस्तों क्या होगा अगर हम चाहेंगे कि सबको खुशी मिले, सबको सेहत मिले, सबको तरक्की मिले, तो शायद हम बहुत ही एक मीठा सा माहौल बनाए रखेंगे अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, है ना? प्रोग्राम चल रहा है अल्फजन, मैं आपके साथ कंचन।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है एल्फ वजन। और दोस्तों, घर परिवार से लेकर दोस्तों की मंडली तक में हम देखते हैं कि एक दूसरे को जैसे नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है। एक दूसरे पर व्यंग्य नहीं मारा तो क्या किया है ना, लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा काम कर लिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि दूसरे को नीचा दिखाकर आखिर क्या हो जाता है। हम अपने अंदर जो है नकारात्मक विचार को पालते रहते हैं, और बड़प्पन तो इस बात में है जब हम सबके लिए बहुत मीठे बने रहें। जो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना पालते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की ज़रूरत है। आप अपनी कोई भी बात बताने से पहले 10 बार सोचें, थोड़ा सा ठहरे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपके ऊपर व्यंग्य मारा तो आप और भी बिल्कुल तीखे स्वर अपना लें, है ना, बहुत ही मीठे बनकर मुस्कुराते हुए उनका सामना कीजिए। क्योंकि आप तो आप रहेंगे, आपकी मुस्कान आपकी रहेगी। आप अगर मीठे हैं तो आप सबके लिए बहुत बहुत मीठे बने रहेंगे। प्रोग्राम चल रहा है एल्फ वजन, मैं आपके साथ कंचन।

FM रेनबो पर भी ये सिलसिला चलता रहता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन, लेकिन इसके ठीक बाद 5 बजे आप सुनेंगे सिटी लाइट्स और इसमें आपकी दोस्त रहेंगी कोमल। 6 बजे होगा प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और इसमें प्रियंका त्रिपाठी आपका साथ देगी। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

जी बिल्कुल, कामना करते हैं कि आपके घर परिवार में सब लोग फर्स्ट क्लास रहें और अपने सकारात्मक सोच के साथ आप अपने घर परिवार को, दोस्तों की मंडली को बिल्कुल सजाते रहें, सवारते रहें। मैं कंचन यहीं पर लेती हूं विदा। बहुत ही खुश रहिए और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालूतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000

0: करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास की ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1.05 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with the engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 3. I beg your pardon, Phase 2. A greenfield refinery is an industrial processing plant for oil, gas or minerals built from scratch on undeveloped clean land. Addressing the program, Prime Minister Modi said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस LPG बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर LPG के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन LPG का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: The monsoon session of parliament will commence

0: বিবিধ ভারতী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীত অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়েই টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। আপোনাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগৰ এক নতুন মাধ্যম হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ। আমাৰ নম্বৰ 6003166944।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सारण में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला यह केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
2: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।

0: संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ যতীন শর্মা। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অদ্য রাজস্থানে একদশাংশোত্তর শূন্য পঞ্চ লক্ষ কোটি রূপ্যতোপ্যধিকানাম বিকাশ পরিযোজনানাম উদ্ঘাটনং শিলান্যাসং চ বিহিতবান্। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिक रूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया टी ट्वेंटी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पंच लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
2: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन

0: करणं निर्मातुमेकं ऐतिहासिकं चरणं वर्तते। मन्त्रालयेन गदितं यत् सन्धेः आधारेण परिसीम्नि निवेश गतिविधिषु प्रवर्धनेन सह भारत इज़राइल देशयोः मध्ये रणनीतिक आर्थिक सहभागिता अपि गभीरा भविता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य पुण्यतिथौ तस्मै सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन् इत्यनेन स्वामी विवेकानन्दः कश्चन महान् देशभक्तः दार्शनिकः आध्यात्मिक द्रष्टा चेति व्यपदिष्टः। तेन प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य सभ्यतामूलक चेतनायाः पुनर्जागरणं विहितम्। सहैव देशस्य सनातन ज्ञानं कृत्स्नं हि विश्वं प्रति प्रसारितम्। उपराष्ट्रपतिना सबलं विज्ञापितं यत् स्वामिनः आत्म विश्वासपूर्णस्य प्रबुद्धस्य करुणापूर्णस्य च भारतस्य परिकल्पना अद्यापि राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः मार्गं दिशति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य संस्कृतम् आध्यात्मिकतां राष्ट्रिय चेतनां च वैश्विक पटले प्रतिष्ठापयितुं स्वामी विवेकानन्दस्य यत् अवदानं वर्तते तत् अनुपम अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृ न्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखाङ्कितवान्। केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रह्लाद जोशिना लेखं प्रकाशयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बद्ध पक्षैः सह व्यापक मन्त्रणायाः परं ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं क्रीडेयं अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: एया आकाशवाणी गुवाहाटीर प्ৰাগজ্যোতিষপুর অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম এভাৰ টুক 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু DIM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। প্ৰিয়শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো নীতিশা গোস্বামীৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का

मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকৰ বাবে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट

0: पालन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के भूजपत्रा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग

को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से

0: के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnav announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड। द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च।

0: దాని దాని దాని దాని మదద మదద మద గమదని
1: చేసే నారు కోయి

0: वंदे मातरम।
1: सुफला मलयज शीतला।